0: क्या बात है क्या बात है मजा आ गया भाई
1: थैंक यू वेरी मच
2: नेगेटिव प्रोग्राम से ज्यादा तो हमने आपके साथ आमने सामने बैठ के सुना
0: हां हां ये है ना कभी किसी को मुकम्मल जहां ये जो गजल का है ये भी एक
2: मेंटल कितना डीप मीनिंग है इसका
0: संसार में प्यार बहुत है लेकिन जहां से चाहिए वहां नहीं मिलता ये सारी हर एक की प्रॉब्लम है
1: जी
2: एक्सपेक्टेशन वो कहते हैं इफ एक्सपेक्टेशन इज डिलीटेड फ्रॉम योर लाइफ समझे आप सबसे खुश है इंसान
0: जी जी
2: ये एक्सपेक्टेशन का ही रोना है
1: मेरी वन ऑफ द फेवरेट गजल्स है क्योंकि एक एक लाइन इसकी इतनी मीनिंगफुल है
2: बहुत
1: इसका जो पहला अगर आप मीनिंग सुने तो जिसे भी देखिए अपने आप में गुम है जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता क्योंकि सब अपनी अपनी जुबान में बोल रहे हैं और कोई हम जुबान नहीं
0: लेकिन मेरा डॉक्टर साहब एक बहुत सिंपल सी बात है एक हम एडवर्टाइजमेंट अभी सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर का उनका भी बहुत जरूरी होता है
1: जी जी
0: एक मेरी बहुत छोटी सी बात है कि आप इम्परफेक्ट हैं आप भगवान ने 8 बिलियन लोग बनाए हैं
1: जी
0: एक भी फोटोकॉपी नहीं है
1: जी
0: एक अगर आप जो बिल्कुल बिल्कुल जुड़वा भी होते हैं ना बिल्कुल सॉलिड वाले जुड़वा वो भी नहीं होते
1: उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होता ही है
0: जब भगवान ने ही अलग अलग बनाए तो भाई काहे के लिए पीछे पड़े हो भाई कैसे हम जुमा मिलेगा कैसे एक जैसे मैं कहता हूँ प्यार वो होता है कि आप उसको एज इट इज उसको
2: एक्सेप्ट
0: सेलिब्रेट नहीं नहीं एक्सेप्ट नहीं नहीं नहीं उसको सेलिब्रेट करें जो एक्सेप्टेंस है एडजस्ट करना ये बड़ी गलत बात है
2: नहीं तो सेलिब्रेट से आपका क्या मतलब है
0: सेलिब्रेट का मतलब कि आप जैसे हो हम आपके साथ को उसको उन्माद के साथ नहीं नहीं अप्रिशिएट है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ को हम जैसे कि आप पूजा करती हैं मैं पूजा नहीं करता एक काफी वो होता है तो मैं उस चीज को सेलिब्रेट करूं कि यस यू आर आप पूजा करते हो कितनी अच्छी बात है मैं नहीं कर रहा हूं वो अलग की बात
2: नहीं बट मैं नहीं करता तो मैं कैसे समझूं कि
0: आप समझें क्योंकि हम जो भगवान की बनाई हुई चीज है जो आपको भी उतना ही अधिकार देता हूं मुझे मैं क्यों इम्पोज करूं अपनी बात को
2: हाँ,
0: क्यों आप जैसे कि आप सेलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि जो भी आपको मिला आपने उसको आनंद के साथ में जिया उस पल को भले ही आपको पसंद नहीं है
2: लेकिन फिर एक्सेप्टेंस ही हो गई
0: नहीं नहीं एक्सेप्टेंस नहीं आप यही एक क्रक्स है इस चीज का कि अगर आप इस मूड में आ जाएं कि आई एम गोइंग टू एंजॉय
2: अंकुर जी आप क्या कहते हैं इस पर
0: लेकिन एक काम करें एक एडवर्टाइजमेंट सुन
1: जी जरूर उसके बाद बोलूंगा मैं
3: आर यू लुकिंग फॉर पर्सनल और बिजनेस टैक्स और सेल्फ मैनेज्ड सुपर फंड अकाउंट्स एंड ऑडिट फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन कंपनी और ट्रस्ट क्लाउड अकाउंटिंग विद पेरोल सॉल्यूशन विद फिक्स्ड प्राइसेस मेंशन द ओपन रेडियो एंड गेट योर फर्स्ट विजिट विदाउट एनी चार्ज प्लीज कांटेक्ट फोर्ब्स अकाउंटिंग ऑन 8095-9405 दैट्स 8095-9405 और विजिट आवर वेबसाइट www.fabc.com.au Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Therapin Radio.
4: Every Sunday, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000.
5: Har Ravivar suniye Therapin Hindi Kaikam, 98.5 FM par. Subah 9 se 11 baje tak.
0: तो एक तो हम एक काम कर लेते हैं कि हमारे जो श्रोताओं के मैसेज आते
2: जी,
0: हैं
2: जी मैं यही कहने वाली थी
0: आप अगर
2: हाँ, जरूर कर,
0: और तो हमारे हम वो भी हमारे जो
2: और क्योंकि सांस वाला टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है तो कुछ बड़े अच्छे अच्छे हाँ, इसके ऊपर मैसेजेस आए हैं
0: हाँ, तो हम वहाँ से राजगढ़ जी का एक मैसेज है मैं वो अगर पढ़ देता हूँ
2: पूनम
0: जी इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं कुटुम तो ये June 28 संडे है 7 AM से 10:30 AM ये फ्री इवेंट है फॉर ऑल और हार्वे लो पेवेलियन डोरन ड्राइव कासल हिल 2154 और आप अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो राज गर्ग जी को आप फ़ोन कर लीजिएगा 0411-766-170 और इसका जो और डिटेल है प्लीज़ ब्रिंग योगा मैट एंड बॉटल ऑफ वाटर विद यू तो ये अच्छा हो गया और रजिस्ट्रेशन मस्ट है क्योंकि वो उनको अरेंज करना पड़ेगा तो एक तो ये हो गया और आप आगे सुनाइएगा
2: हाँ तो अलका जी लिखती हैं अंकुर जी के क्योंकि सास भी कभी बहू थी सो ऑल
0: 6170 और इसका जो और डिटेल है प्लीज ब्रिंग योगा मैट एंड बॉटल ऑफ वाटर विद यू तो ये अच्छा हो गया और रजिस्ट्रेशन मस्ट है क्योंकि वो उनको अरेंज करना पड़ेगा तो एक तो ये हो गया और आप आगे सुनाइएगा
2: हाँ तो अलका जी लिखती हैं अंकुर जी के क्योंकि सास भी कभी बहू थी सो ऑल मॉम इन लॉज आर सेम क्योंकि सास को भी अपने ढेर सारे बच्चे पैदा करते करते प्री नेटल और पोस्ट नेटल डिप्रेशन रहा होगा तो इनका ये मानना है कि ये कारण भी हो सकता है राजेश जी लिखते हैं कि नमस्कार जी इट इज़ रियली नाइस टू हेयर दैट पेरीनेटल इश्यूज विच आर मोर प्रेवलेंट एंड हाउ टू मैनेज द इश्यूज मेडिकली शैला जी लिखती हैं सास का चरित्र विशेष व विस्तृत है उसे शब्दों में बांधना संभव नहीं
0: ये तो
2: गजलों में श्रोताओं को नचाने का आपका यह पहला प्रयास लगता है फिर एक मैसेज आया जिसमें वो लिखते हैं वाह क्या बात है अंकुर जी एक तरफ मानसिक संतुलन दूसरी तरफ संगीत से मानसिक शांति का प्रयास राजेश जी फिर लिखते हैं इट्स न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर अस द थ्री बेबी बोनस कॉन्सेप्ट इन ऑस्ट्रेलिया विच वॉज टेकन इन ऑस्ट्रेलियन पार्क

0: element. Music is such a hobby. One should use either use of a music instrument or listening, which can help person to forget his bad times. फिर आया एक मैसेज अंकुर जी के लिए कि 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस और प्रोग्राम से होने वाली आय भी जनसंख्या के लिए समर्पित बहुत अच्छा विचार है. प्रदीप जी लिखते हैं बहुत सुंदर आवाज़ पाई है अंकुर जी. ऋचा जी लिखती हैं अंकुर जी का बेहतरीन इंटरव्यू और मधुर आवाज़ इंजॉइंग. मधुर आवाज़ से बहुत खूबसूरत गज़ल निकली है. इतनी मधुर आवाज़ प्रदीप जी लिख रहे हैं कि लग रहा है कि जगजीत सिंह को सुन रहा हूँ. शौक जारी रखिए अंकुर जी.
1: थैंक यू सो मच.
0: तो नमस्ते रेडियो जॉकीज इंजॉइंग रेडियो एंड टीवी साइमल्टेनियसली. माय क्वेश्चन टू द डॉक इज दिस इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज बीन कॉज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक लिसनिंग टू रेडियो दर्पण एवरी वीक इज डिसऑर्डर.
1: मैं ज़रूर मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हम लेंगे
0: जी.
1: ज़रूर से
0: बिल्कुल लेंगे.
2: तो एक और सूचना है जो म्यूजिक जस्ट फॉर इंडियन. तो ये जॉइन आशा फॉर 3 वाइब्रेंट मल्टी कल्चरल सीनियर इवेंट दिस वीक ट्यूजडे 16 जून 11 to 2 इंजॉय योगा फॉर. तो ये सीनियर के लिए है श्रोताओं प्रोग्राम. मैं पूरा पढ़ता हूँ कि बॉलीवुड म्यूजिक जॉइन अस फॉर इंडियन म्यूजिक एंड मॉर्निंग टी फॉर इंडियन सीनियर्स एंड पीपल ऑफ ऑल कल्चर्स एज 50+. फील द रिदम सिंग अलॉन्ग इमेजिन योरसेल्फ एज ए मूवी स्टार एंड एंजॉय द कंपनी ऑफ अदर्स. ये फरवरी तो ये इनका 2026 के काफ़ी इनके इवेंट होते हैं. तो श्रोताओ जो भी हमारे ग्रुप में हैं वो आप देख सकते हैं. तो एक फरवरी 18 तो उन पूरा साल का कैलेंडर है. दिस इज़ वेरी गुड पार्ट. फरवरी 18 मार्च 18 मार्च अप्रैल 15 मई 20 जून 17 जुलाई 15 अगस्त 19 सितंबर 16 अक्टूबर 21 एंड नवंबर 18.
0: और इसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन हमें ग्रुप में डालनी चाहिए क्योंकि इतना याद रखना.
2: हाँ नहीं वो ग्रुप में ही पड़ी हुई है
0: जी.
2: तो मैं तो केवल ये कहूँगा कि आप ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर लें 9439-5122. वाइज गुड सीनियर के लिए कुछ लोग कर रहे हैं. तो एक और था बस
0: एक लीला तिवानी जी का मैसेज मैं पढ़ना चाहूँगी.
2: जी जी.
0: बढ़ती आबादी पर नहीं लगाओगे विराम भविष्य होगा चौपट भुगतान पड़ेगा
2: भुगतना पड़ेगा
0: भुगतना पड़ेगा अंजाम. सो लीला तिवानी जी का ये विचार है पॉपुलेशन.
2: तो इसमें
0: ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में तो ठीक होगा बट नॉट.
1: देखिए अब मैं थोड़ा इसमें कुछ अगर कह सकूँ तो कंटेक्चुअली अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से जब आप बात कर रहे थे यतिन जी पुरानी जिस समय उन्होंने 3 बच्चों का एक इंसेंटिव भी दिया था. एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कम हो रही थी और पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव थी ऑस्ट्रेलिया की.
2: वैसे अगर यहाँ पर लोग इम्पोर्ट ना करे जाएँ तो यहाँ पर भी
0: नेगेटिव.
1: लेकिन पिछले कुछ सालों में 10-15-20 सालों में जिस तरह से इमिग्रेशन हुआ है जिस तरह से लोग बढ़े हैं मेरे ख्याल से अब दे डोंट वांट टू एनकरेज द सेम थिंग.
2: यहाँ पे डायनेमिक्स थोड़े से अलग हैं डॉक्टर साहब एंड वी हैव टू बी ओपन एंड फ्रेंक अबाउट इट. जो डेमोक्रेसी में पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है और जिस एक वर्ग का अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो दूसरे वर्ग को बढ़ाना ही पड़ता है. अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ रहा है. ये दुनिया में हो रहा है. सवाल वहाँ पे है. रूल हर एक के लिए होना पड़ता है. रूल एक के लिए नहीं हो सकता है. आप एक को बोलोगे कि ऐसा करो दूसरे को. पॉपुलेशन इज नॉट जस्ट कि एक आप किसी ने बच्चे दो पैदा करे. इट्स नॉट इट्स मोर देन दैट. अनफॉर्चुनेटली ये फेस कर रही है पूरी दुनिया. पूरा यूरोप तबाह हो गया है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट. आप उसको बोलो कि जैसे मर्जी आपको कहना कहिए लेकिन इससे सच्चाई को आप नहीं कर सकते. तो एनी हाउ
0: पर यतीन जी यहाँ एक बात जोड़नी चाहूँगी कि جو جس طرح کا اس وقت ہماری سوسائٹی کا اسٹرکچر چل رہا ہے کہ عورتیں پہلے جسے کہتے ہیں نا پریوار کو بڑھانے کے لیے کافی جسے کہتے ہیں کام کرتی تھیں یا ان کے باہر کے کام اتنے نہیں ہوتے تھے تو ان کی ساری اٹینشن ہوم بلڈنگ پہ ہوتی تھی بچے پیدا کرنا انہیں بڑا کرنا یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا آج کے ڈیٹ میں مینی ویمن فرسٹ تو وہ ایجوکیشن لیتی ہیں پھر جب اتنی ایجوکیشن لے لی تو پھر کریئر بناتی ہیں تو جو بچے پیدا کرنا بیک سیٹ لے لیتا ہے اور جب تک وہ سوچ پاتی ہیں کہ ہم بچے کریں تب تک ان کا شریر ان کا ساتھ نہیں دیتا
2: تو بچے اس لیے بھی بہت کم ہو رہے ہیں یہ بھی سچ
0: ہے یہ میرے خیال ہندوستان میں بھی یہ
2: ہر جگہ ہے
1: جی ہر جگہ
2: ابھی لڑکیاں شادی نہیں

0: आपके पास पेशेंट होते होंगे जो कहते हैं कि भाई क्यों मैं शादी करूं, मैं अच्छा खासा, मेरी लाइफस्टाइल है, मेरा अपार्टमेंट बड़ा है, मैं जहां जाऊं, जिसको मिलूं, जिसको घूमूं, जो भी करूं, जो आई एम लिविंग माय लाइफ।
1: यतीन जी, नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म है, अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज़ देखें। ये सदर्न इंडिया की, साउथ इंडिया की फिल्म है और इसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस पॉली शेट्टी। तो उसमें एग्जैक्टली यही दर्शाया है कि जो लड़की है वो डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, बच्चा चाहती है बट शादी नहीं करना चाहती, और वो कैसे जाती है, बच्चा चाहती है पर शादी, क्योंकि माँ मरने से पहले कहती है देखो तुम मेरी एक बच्ची हो, एटलीस्ट तुमने मेरा ख्याल रखा, कल को तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। तो वो कहती है अच्छा मेरी माँ कह के गई है तो मैं बच्चा तो ज़रूर करूँगी, अब बच्चा कैसे करूँगी, तो वो स्पर्म बैंक जाती है, तो वो अपनी डिटेल्स देती है कि मुझे इस तरह का डिज़ाइनर बेबी चाहिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मस्ट वॉच। शुदा आप भी अगर देखना चाहें तो आपको ये मूवी पसंद आएगी। तो फाइनली उसका एंड ये होता है कि जिसका स्पर्म वो यूज़ करती है वो ही उसकी ज़िंदगी में आ जाता है, और फिर उसका ये रिजल्ट होता है कि वो, यहाँ ये नीच बताऊँगी, फिल्म देखे आप।
2: इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग।
0: तो एनी हाउ ये पॉपुलेशन वाला ये टॉपिक आ गया बीच में
1: जी।
0: मेरा
1: पर वो आपका सवाल जो था,
0: मेरा पर्पस जो ये नहीं था कि मैं पॉपुलेशन को बढ़ाऊं या घटाऊं, मैंने केवल आपने क्योंकि बोला ना छोटा परिवार है तो मुझे थोड़ा लगा कि आपके अंदर कह सके, यहाँ से पॉपुलेशन की बात शुरू हो गई।
1: नहीं, हमने जहाँ छोड़ा था कि एक्सेप्टेंस और सेलिब्रेशन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं
2: जी? मैं कह रहा था आइडियल वर्ल्ड में यस, इफ वी कुड सेलिब्रेट दैट विल बी ऑसम, दैट विल बी द, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा उच्चतम लेवल का चीज होगा कि आप सेलिब्रेट कर सकें अपने डिफरेंसेस, कि मैं कैसे अलग हूँ और मेरा पार्टनर कैसे अलग है, पर हो नहीं पाता है। तब ऐसे केस में एटलीस्ट एक्सेप्टेंस आती है, फिर एक्सेप्टेंस धीरे धीरे सेलिब्रेशन में कन्वर्ट होती है। लेकिन आज के समाज में बदलाव ऐसे आ चुका है कि कॉम्प्रोमाइजेज या एक्सेप्टेंस को कमजोरी समझा जाता है, और इसलिए लोग आजकल धीरे धीरे
0: एहसान कर रहा हूँ, अपने को मैं बचा रहा हूँ, वो जो पल है उस पल को मैं जी रहा हूँ,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उस पल की जो खूब, क्योंकि वो पल दोबारा मेरे जीवन में नहीं आएगा, मैं क्यों उस पल को द्वंद में बिताऊं?
2: अगर आप कर सकते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ
0: मैं करता हूँ। मैं डेली बेसिस पे मैं बहुत डाइवर्स लोगों से डेली मिलता हूँ
2: जी जी,
0: एंड व्हेन यू विल सी मी एंड मीट मी, जब आप देखेंगे आई एम जस्ट एंजॉयिंग दैट पार्ट,
2: बिल्कुल,
0: कोई चा नहीं है, कोई ये है, कोई वो है, कोई जस्ट एंजॉय दैट पार्ट,
2: बिल्कुल।
0: और मैं ऐसा करके किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने को हम अब ट्रस्ट में, अगर आप ये लेके जाओगे आप इसमें द्वंद में फंसोगे नहीं, आप कहोगे मैं सारा क्यों गुस्सा करूं, मैं क्यों उसमें एक्सेप्टेंस हो, उसमें जाऊं टॉलरेट करूं। आप कभी सोचना पुनंद जी, आप मुझे स्वार्थी कह सकते हो डेली ऑलमोस्ट, आप लोग तो बाकी में कुछ केयर कर रहे हो, मैं तो आई एम द सेल्फिश पर्सन, यू विल फाइंड एवरी, I'm just enjoying everything. I don't care.
1: ये कोशिश करेंगे कि आप जैसे लोग और समाज में बढ़े, आपकी जो थिंकिंग है, क्योंकि इंसान की ये थिंकिंग नहीं हो पाती, नहीं हो पाती प्रैक्टिकली सोच,
0: तो मैं आम इंसान नहीं हूँ, आप ही कह रहे
1: हैं आम इंसान, हम लोग नहीं, शायद आप उस उचित स्तर पे पहुंच गए हैं, आपकी कॉन्शियसनेस वहां तक चली गई है कि ये है, ये एज इट इज है, और जो मैं हूँ मैं एज इट इज हूँ, लेट्स सेलिब्रेट इट टुगेदर। बट जो सामने वाला है अगर वो नहीं कर रहा तो तब आप क्या करें?
0: नहीं, वो नहीं, वो उसकी उसका अटैक है, मैं क्यों उसमें फंसूं?
1: ठीक है, गुड। अब हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अंकुर जी के, जो लिखा है नमस्कार रेडियो जॉकीज, इंजॉइंग द प्रोग्राम साइमल्टेनियसली विद टीवी, माय क्वेश्चन इज टू द डॉक, इज द इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज मेन कॉज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक लिसनिंग टू रेडियो दर्पण? ये तो उन्होंने मजाक की है क्या, तो आप ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन पे क्या कहना चाहेंगे?
2: इंफॉर्मेशन ओवरलोड या कोई भी एक चीज मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर करने के लिए काफ़ी नहीं होती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप 10 लोग बिठा दें कहीं पर और उनको सेम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन रोज़ देते रहें तो ज़रूरी नहीं है कि सबको एक मेंटल इलनेस हो जाएगी। इसका मतलब कुछ तो और है जो फ़र्क है उन लोगों में जो शायद नहीं है उनके अंदर, इसलिए हर किसी को एक बीमारी नहीं होती है। तो एक ये एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है कि एक मानसिक बीमारी को पनपने के लिए, जैसे कि एक पेड़ को पनपने के लिए सही मात्रा में आपको सनशाइन चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, उसी तरह ایک بیماری کو سائیکل

0: साइकियाट्रिक इलनेस को, मेंटल इलनेस को पनपने के लिए भी सही मात्रा में तीन चीज़ों की ज़रूरत है. एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि आपके ब्रेन की केमिस्ट्री और आपके बॉडी की केमिस्ट्री. दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी और आपका बचपन जो कैसे गुजरा और आपने आपने कैसे इस दुनिया को समझा है आपके दिमाग ने और क्या पर्सनैलिटी आपकी शेपअप हुई है. और तीसरी चीज़ है सोशल फैक्टर्स, यानी कि आज के आपके सर्कमस्टांसेस,
1: कैसे कंडीशनिंग हुई है
0: जी आज के सर्कमस्टांसेस. मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अदरवाइज फाइन थे लेकिन उनकी जॉब चली गई अचानक से, वो फाइनेंशियल क्रंच में आ गए और वो डिप्रेस हो गए. और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर हम सब की टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है किसी भी परेशानी का सबसे आसान इलाज ढूंढने की.
1: बिल्कुल.
0: पर जरूरी नहीं कि सबसे आसान इलाज है वो सबसे सही इलाज हो.
1: सही इलाज.
0: आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, कहीं किसी चीज़ का मन नहीं करता, लोगों से मिलने का मन नहीं करता, मेरी नौकरी चली गई है. अगर वो डॉक्टर आपको दवाई देता है तो मेरे हिसाब से वो इलाज उसका नहीं है. कौन सी दवाई आपको जॉब दिला देगी या आपकी उस मानसिक स्थिति को ठीक कर देगी? क्योंकि इस वक्त आपकी परेशानी प्योरली सोशल है. आपकी जॉब, अगर कल आपको जॉब मिल जाएगी तो आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा शायद.
1: बिल्कुल.
0: और सिमिलरली जब कोई डॉक्टर के पास जाता है और बताता है कि मुझे सब कुछ लाइफ में ठीक ठीक चल रहा है पर अचानक से धीरे धीरे करके मैं उदासी आने लगी है मेरे अंदर, मैं सवेरे उठ नहीं पाता और और सब कुछ छूट गया है, मन उदास रहता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहने वाला हूँ कि मेरे मन में सुइसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के थॉट्स आ रहे हैं, तो ये वो समय है जब शायद बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर प्रेडोमिनेटिंग. और इस वक्त अगर दवाई का सही इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ पर ठीक होगा, उचित होगा. और तीसरा एक इंसान आता है जो सारी उम्र ही नेगेटिव रहा है, हमेशा उदासी की बात करता है, हमेशा दुनिया को नेगेटिवली देखता है, उसे लगता है सारी दुनिया उसके अगेंस्ट ही है. और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने बचपन में ये सब कुछ देखा है, उसकी पर्सनैलिटी शेपअप ऐसी हुई है. उसको आप कितनी भी दवाई दे दें नहीं ठीक होगा, उसकी जॉब चाहे छूटे चाहे लगे वो फिर भी दुखी ही रहेगा. उसको आपको एक सही मात्रा में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी ताकि वो अपनी जो उसकी सोच है उसमें धीरे धीरे धीरे करके बदलाव आ पाए. तो इसलिए
2: क्या ट्रीटमेंट होता है, जैसे
0: साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स देते हैं. और वो टेलर्ड होता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं. कुछ ऐसे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनके नाम होते हैं जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, ये स्पेसिफिक थेरेपीज हैं जो स्पेसिफिक तरह की कंडीशंस या पर्सनैलिटीज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. तो मेरे और कभी कभी हम इन तीनों का, और अक्सर ही हमें इन तीनों चीजों को मिला के चलना पड़ता है कि हमें दवाई की भी जरूरत है, हमें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत है, और हमें कुछ सिचुएशनल चीजों को ठीक करने की भी जरूरत है.
1: पेशेंट इस हालत तक क्यों पहुंचा, ये सारी चीजों का.
0: एग्जैक्टली.
2: एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए
0: प्लीज.
3: 1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन.

0: सो तो कैसे लगी ये गजल? तो आज हम गजल ही बजाते हैं डॉक्टर साहब।
1: डॉक्टर साहब की भी एक और सुननी है हमने गजल, डोंट फॉरगेट दैट, टाइम भाग रहा है।
0: तो एक

0: Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: Eti hamare sponsor Curry Masters ka sandesh.
2: Yatin ji, ye jo saas aur bahu wala jo hai na topic,
3: ji
2: ye bada hot hai.
3: Oh my god.
2: To usme likhte hain ek hamare shrota, maa ka umbilical cord kabhi bhi khatam nahi hota. Kahan gaya wo message? हाँ तो माँ का अम्बिलिकल कॉर्ड कभी भी खत्म नहीं होता इट्स इमटीरियल इफ सन इज मैरिड और नॉट हर लव कैन अंडरस्टैंड ओनली बाय अ मदर एंड नोबडी एल्स फिर लीला जी लिखती हैं अक्सर मैं साक्षात्कार लेते रहती हूँ चीन की बहुत सी महिलाओं का कहना है कि चीन में एक ही बच्चा पैदा कर सकने का कानून है ज़्यादा बच्चों के लिए हम ऑस्ट्रेलिया आए राजेश जी लिखते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन One can see on SBS Insight program on coming Tuesday evening at 8:30 on to have child or not to have in Australia different speakers with the views. Vivek ji likhte hai, very nice analysis Ankur ji. To what extent is the rise in mental health challenges driven by an actual decline in resilience versus increased awareness and diagnosis of the issues that previously went unrecognized
4: excellent question excellent
2: phir himlata ji likhti hai namaste darpan radio and your team and all my friends very nice program thank you rajesh ji likhte hai beautiful ghazal phir leela ji likhti hai mansik santulan ko paribhashit karti bahut pyari sarthak ghazal leela ji ko bhi hamari ghazal pasand aayi to let's come back to the question ke jo pucha hai to what extent is the rise in mental health challenges driven by an actual decline in resilience versus increased awareness and diagnosis of issues that previously went unrecognized
4: bilkul aur dono hi baatein bilkul sahi hain dono hi sabse bade factors hain jinki wajah se mental health ka jo prevalence kahiye wo badh gaya hai aaj ke zamane mein resilience definitely kam ho gayi hai isme koi do raaye nahi hai ki resilience kam ho gayi hai aur uska koi ek karan nahi hai uske bahut sare karan hain aur wo samaj ka jo parivartan ho raha hai wo itself unfortunately is giving rise to the reduction in the resilience
5: ek hamare shota hamare darpan pakwan ke hamare anchor bhi hain pradeep upadhyay ji unse hum ek baat karte hain pradeep ji radio program mein aapka swagat hai
6: धन्यवाद यतीन जी और अंकुर जी का भी धन्यवाद कि इतना सुंदर कार्यक्रम और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम विचार कर रहे हैं और साथ में संगीत का भी इतना आनंद ले रहे हैं तो अंकुर जी बहुत सुंदर आपने
4: थैंक यू सर
6: दर्पण के कार्यक्रम दर्पण श्रोताओं का बहुत अच्छा मनोरंजन किया है एक दो छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा कि ये बात तो सही है कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दो विषय हैं और शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो सबको दिखता है किसी को जैसे चोट है या किसी को फीवर है तो सामने से दिखता है और उसको कहा जाता है कि आप अपना इलाज कराइए आप सही नहीं है लेकिन मानसिक समस्या थोड़ी अलग है क्योंकि वो औरों को दिखती है लेकिन उसका कोई एक क्लियर सिम्टम नहीं होता और
4: बिल्कुल
6: कई बार देखा है कि मरीज जो है वो डिनायल में रहते कि नहीं मैं तो ठीक हूँ मेरा पर्सनैलिटी ऐसी है ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए
4: जी जी बिल्कुल थैंक यू सो मच प्रदीप जी और आप ऑनलाइन हैं तो मैं आपसे पहले बता देता हूँ और फिर हम जो बात कर रहे थे वो मैं आगे कंप्लीट करूंगा
2: जी
4: तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये मैं अपने पेशेंट्स और उनकी फैमिली मेम्बर्स से अक्सर डिस्कस करता हूँ कि अगर किसी को चोट लगी है पैर में फ्रैक्चर है तो सारे घर के लोग उसको ये बोलेंगे कि देखो आराम करना है जब आप की जो फ्रैक्चर का जो कास्ट है प्लास्टर लगा हुआ है जब वो निकलेगा तो आपको धीरे धीरे चलना है क्रचेज लेके चलना है दौड़ना नहीं है भागना नहीं है और कुछ महीने में धीरे धीरे जब आप ठीक हो जाएंगे तभी आप चले या भागेंगे कितना क्लियर है हम सबको इस बात का पता है कि यही बोलना है जब आप किसी से मिलें जिसके पैर में फ्रैक्चर है लेकिन जब किसी को डिप्रेशन होता है तो हम उससे बोलते हैं यू शुड दैट्स ओके गेट ओवर इट यू कैन डू इट यू कैन डू इट
2: कोई ठोस बात नहीं बताते
4: बिल्कुल इसलिए क्योंकि हम सब मानसिक बीमारियों को एक बीमारी की तरह नहीं देखते उस तरह नहीं देखते जिस तरह हम टीबी निमोनिया फ्रैक्चर को देखते हैं उस तरह से हम मेंटल हेल्थ को नहीं देखते हम मेंटल हेल्थ को देखते हैं कि वो आपके कैरेक्टर की वीकनेस है वो एक बीमारी नहीं है जी और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग खुद बताने से डरते हैं क्योंकि अगर वो बताएंगे तो घर के लोग समझेंगे नहीं कि ये क्या परेशानी है बोलेंगे क्या तुम फालतू की लेके बात लेके बैठे हो क्यों इस बात को तुमने मन में लगा लिया और तुमने खाना पीना छोड़ दिया और तीन महीने से तुम काम पे भी नहीं जा रहे हो rather than understanding ki what exactly could be the problem which is depression most likely
2: aur uska aage kya karan kya hai unke paas job nahi
4: exactly
2: to sare log agar milke usme madad kare jo mool karan hai
4: ji
2: par aisa nahi
4: to to ye jo taboo aapne word use kiya bilkul sahi baat hai ya stigma ki log mansik bimariyon ko bimari nahi samajhte character ki weakness samajhte
2: wo ye kehte hain ki oh main pagal ho gaya
4: जी
2: पागल होना तो बहुत खराब है तो वो एक वेग सा जो है आइडिया हाँ।
4: और अनफॉर्चुनेटली आप कोई ब्लड टेस्ट करा के डिप्रेशन डायग्नोज
2: नहीं डायग्नोज
4: कर सकते है ना एंजाइटी भी नहीं डायग्नोज कर सकते तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हैं हम सब कर सकते हैं वो है अवेयरनेस इस बात को लोगों तक पहुंचाना कि एक तो हर चीज मेंटल इलनेस नहीं होती स्ट्रेस किसी बात का लेना मेंटल इलनेस नहीं है लेकिन हर चीज स्ट्रेस भी नहीं होता है कुछ चीजें मेंटल इलनेस होती हैं जिसका ट्रीटमेंट चाहिए उसी लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं उसी के लिए आपको
2: मेरे ख्याल से आप यही करते हैं पेशेंट के साथ बैठ के पूरी उसे सुनते हैं पहले क्योंकि सुनने वाला भी कोई नहीं है
4: आप एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऑन एन एवरेज 5 या 10 मिनट बात करेंगे आप एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपसे पहले कम से कम 1 घंटा आपकी स्टोरी समझेगा और जानने की कोशिश करेगा और समझने की कोशिश करेगा कि प्रॉब्लम कहां है
2: पेशेंट हियरिंग है ना
4: एग्जैक्टली
2: वो नहीं है
4: लिसनिंग इज वेरी
2: लोगों के पास इतना वक्त नहीं है
4: एब्सोल्युटली
3: तो आप कुछ कहना चाहते हैं ये जो विमर्श
6: नहीं ये बहुत अच्छा इसमें बताया और ये एक अच्छा विषय है जिसमें मेरे ख्याल से जो स्वस्थ लोग हैं उन लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो उसको कैसे डील करना है और दूसरा मेरा एक सवाल था यही अंतिम सवाल होगा मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो अब जैसे छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूलिंग में है या सेकेंडरी स्कूलिंग में है या यंग किड्स हैं जो कि अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं तो वो इस तरीके की समस्याओं का शिकार ना हो उनका स्वास्थ्य अब जैसे फ्रैक्चर का आपने बड़ा एग्जाम्पल दिया तो हम जैसे चाहते हैं बच्चे को कि भाई अच्छा जूता पहनो फिसलन उसमें ना हो उसका सोल अच्छा हो ताकि आपके फिसल के गिरने की और फ्रैक्चर होने की संभावना कम से कम हो तो इसी तरीके की प्रिकॉशन मेरे ख्याल से मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी होनी चाहिए कि बच्चे को जो छोटा बच्चा है जो अभी स्कूलिंग शुरू की है जिसने या सेकेंडरी स्कूलिंग में है तो उसको एज ए पेरेंट या एज ए फ्रेंड इवन उसको किस तरीके से हमको करना चाहिए था कि इस तरीके की संभावना में पढ़ने की संभावना कम से कम हो जाए इस बारे में कुछ प्रकाश डालिए
4: देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और यही तो मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज है जिसपे अगर हम काम करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो कई गुना बेटर होगा देन ट्रीटिंग मेंटल इलनेस एज इट सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर और जस्ट कुछ सेकेंड्स लेना चाहूंगा कि मेरा जो काम है वो मुझे फैसिनेट इसीलिए करता है क्योंकि मैं प्रिवेंशन से भी एक स्टेप पहले का काम करता हूं मेरे कहने का मतलब यह है कि जब एक मदर को मेंटल इलनेस होती है और बच्चा उसके पेट में होता है उस पे उस मेंटल इलनेस का असर वहीं से शुरू हो जाता है
2: सही कहा
4: मां के पेट से
2: बिल्कुल
4: और जब वो बच्चा पैदा होता है और उसकी मां उसका देखरेख नहीं कर पाती अपने मानसिक स्वास्थ्य की वजह से तो वो बच्चा ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका होता है कि जब मैं 20 साल का होऊंगा तो मुझे डिप्रेशन और एंग्जाइटी होगा तो अगर हम उस मां के मानसिक स्वास्थ्य पे काम करें जो अभी प्रेग्नेंट है या होने वाली है तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को ऑलरेडी मानसिक स्वास्थ्य दे रहे हैं और मानसिक इलनेस मानसिक परेशानी से बता रहे हैं तो एक तो ये काम जो मैं कर रहा हूं जो मेरा काम है जो कि इसीलिए मैं बहुत आई फील रियली प्राउड ऑफ डूइंग दिस जॉब ट्रीटिंग मेंटल इलनेस इन मदर्स दूसरा आपने कहा बिल्कुल ये जो सेकेंडरी स्कूल कि हम बात कर रहे हैं ना हमें उससे भी पीछे आने की जरूरत है हमें बचपन में आने की जरूरत है मां बाप जो बच्चे को देते हैं वो उनके साथ सारी उम्र रहता है जो हमने रेजिलियंस की बात कर रहे थे वो रेजिलियंस भी मां बाप से ही आती है
2: बिल्कुल
4: वो मां बाप का होना वो मां बाप का समझना वो मां बाप का समझाना कि बेटा अगर ये चीज तुम्हें अभी नहीं मिल सकती तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड दिस इज डज नॉट मीन दैट एवरीथिंग इज फिनिश्ड नाउ there are alternatives and everything. It starts from a toffee, it starts from a lolly, it starts from a biscuit. Hum agar ek 18 saal ke bacche ko yahi baat samjhane ki koshish karenge pehli baar, wo nahi samjhega, wo aapse dur chala jayega kyunki use lagega aap samajh nahi rahe uski baat. Par yahi agar aap ek 5 saal ke bacche ko sikhana shuru karenge jiski aap duniya hain, us pe iska bahut positive asar padta hai aur wo dheere dheere dheere dheere uski neev jo hai wo resilient hoti hai, foundation achhi hoti hai, isliye wo aage jaake जीवन की जो भी तकलीफें हैं उनको
2: जी यहाँ पर अंकुर जी के हमारे अगर हम कुछ 25-30 साल पीछे चले जाएं तो हमारे यहाँ जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो हवन रखा जाता है जिसे कहते हैं उपनयन संस्कार
4: जी
2: दिए जाते हैं तो माँ को अच्छा टेक्स्ट पढ़े उसके आसपास अच्छे फोटोज लगाए जाते थे कृष्ण भगवान के तो कि ऐसा बच्चा पैदा तो उन और जहाँ वो काम कर रही है अब अगर आज की डेट में हम देखें एक माँ सिल्वर वाटर जेल में काम कर रही है तो कितना ही अपने आप को बचा लेगी वो सारी चीज़ों का जो उसका माहौल है उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा तो मेरे ख्याल से कंडीशनिंग माँ की सबसे जहाँ से वो बच्चा आ रहा है वो 9 महीने कैसी रही खुश रही उदास रही या क्या हो गया उसके साथ आई थिंक वो जो नींव पड़ जाए
3: एक फिल्म आई थी ट्विंस करके ये बॉलीवुड की नहीं हॉलीवुड की मूवी है ट्विंस तो उसमें दो लड़के हैं तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है एक माँ होती है उसके 5 फादर को स्पर्म बना के एक अच्छा
2: जी
3: उससे समाव दो पैदा हो जाते हैं
2: अच्छा
3: तो दूसरा वाला जो उसको जैसे कूड़ा इस तरीके से तो वो हुए तो दो बच्चे तो जब वो आपस में मिलते हैं दोनों एक को जो है ना वो बिल्कुल अच्छे उसमें लेके जाते हैं बीच में रहता है अच्छी अच्छी पढ़ाई सब कुछ ही वाज लाइक अ टॉप क्लास जीनियस ऑफ एनीथिंग ही कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम जो दूसरा वाला है वो चोरी चकारी ये सब
2: हाँ, तो ये तो बॉलीवुड की कहानियां कितनी बन चुकी हैं इस पे
3: नहीं मेरी बात सुने तो आखिर में जब दोनों मिलते हैं तो वो कहता है कि यू नो यू आर गुड ये उनको मालूम पड़ जाता है कि एक्सपेरिमेंट हुआ था You have good genes and I'm kachra I'm you know
2: yeah.
3: karke kehta ki nahi jo intelligent jo
2: kehta sahi hai
3: mujhe acha environment mila hai jiski wajah se
2: conditioning meri achi
3: agar aapko bhi woh milti to aap bhi waise hi hote
2: sahi
3: to ye iska ek bahut bada role hai jeev ji ho sakta hai ki aapke answer ka thoda bahut jawab mila ho
6: bilkul sahi jawab mila hai aur ye jo aapne jo last mein jo ek naya jo string aapne add ki ke ye kaisi upbringing hoti hai uske hisab se isme bhi actually ek charcha ki ja sakti hai ki jaise do bacche born hote hain twins hi born hai ya jo aage piche ke ek do saal ka fark hai aur jab wo 5-6 saal ke jab hote hain to उनकी पर्सनैलिटी में हम बहुत डिस्टिंक्ट डिफरेंस देखते हैं
3: yes.
6: एक को जैसे जल्दी गुस्सा आता है एक बड़ा कूल होता है इस तरीके के कई उदाहरण हो सकते हैं तो इससे एक चीज ये होती है कि ठीक है हमारी अपब्रिंगिंग तो दोनों के लिए सेम थी लेकिन फिर इतने दोनों फर्क क्यों है तो ये एक मेरे ख्याल से थोड़ा अध्यात्म की ओर ले जाता है क्या जो हम बॉर्न होते हैं अपने उसको चाहे DNA कह ले साइंटिफिक लैंग्वेज में या पूर्व कर्मों का प्रभाव या पूर्व जन्मों का प्रारब्ध कह लें उसको लेकर पैदा होते हैं इस पर एक अलग चर्चा की जा सकती है और मेरे ख्याल से विज्ञान इस पर भी विचार कर रहा है लेकिन हाँ मैं आज्ञा चाहूंगा डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे जवाब दिए और मेरी जो भ्रांतियां थी उनको दूर किया और आज के श्रोता निश्चय ही आज लाभान्वित हो गया
4: थैंक यू सो मच थैंक यू
3: तो ये जो है ना एक ऐसा है सिलसिला लेकिन एक चाहेंगे डॉक्टर साहब हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम आप थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद में हम चाहेंगे कि आप एक टिप्स दीजिए छोटी मोटी
2: एक गीत भी सुनना है और
3: हाँ
2: एक गीत भी सुनना
3: अच्छा एक गीत भी सुनना
2: कैसे तो चलो
3: पहले गीत ही सुने पहले गीत ही सुन लेते
2: हैं प्रॉब्लम है
3: तो अभी ऐसे है ना कि कैरियोकी नहीं बजाते क्योंकि
4: जी
3: कैरियोकी से गड़बड़ हो रहा था
4: जी
3: आप वैसे ही सुनाइए
4: अच्छा
3: ठीक है ना
4: जी
3: क्योंकि हाँ चलिए
4: जी ये मेरे ख्याल से ये जो मैं गीत गुनगुनाऊंगा दो शब्द गुनगुनाऊंगा ये जीवन का सार है बहुत ही सिंपल शब्दों में कवि ने ये गाना लिखा और पर अगर समझना चाहें तो بہت ہی خوبصورت بہت ہی ڈیپ میننگ ہے اس کی.

0: बहुत ही सुंदर
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे
2: थैंक यू थैंक यू
1: ये जीवन है बस
0: सच में
1: यही तो एक बस
0: एक मैसेज और आया जी
1: जी
0: इनकरेज अंकुर प्लीज ही इज अ ग्रेट पर्सन एंड अ ग्रेट सिंगर टू अलोंग विद अ ग्रेट साइकियाट्रिस्ट अंकुर जी नीड्स टू बी सपोर्टेड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग हिम टू अस ये आपके लिए
2: थैंक यू
0: टुडेज प्रोग्राम इज रियली गुड
1: थैंक यू

0: साया जिंदगी धूप और तुम घना साया अगर ये ऐसा प्यार मिल जाता है तो फिर बात ही अलग है
1: भाई साहब ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है
2: बहन जी करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है इसमें अनियन गार्लिक जिंजर टमाटर मिर्च हल्दी धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है इट्स सो इजी इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au
0: श्रोताओं ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश आप सोच रहे होंगे ये मैं मिक्स क्यों कर रहा था इसके मैं वजह आपको बता देता हूँ क्योंकि समय कम हो रहा है और गजल भी सुनने का मन कर रहा है एड भी बजाना है और हमें कई बातें करनी भी हैं तो इसलिए थोड़ा मैंने ये करा तो डॉक्टर साहब कई चीज़ों का एक है एक तो सोशल मीडिया का एआई का लोग एआई पे अपने दोस्त अपने हस्बैंड अपनी वाइफ बना रहे हैं ये मान ये जो
3: साइकोलॉजी है हाँ
0: इसको आप कैसे चैलेंज करेंगे और थोड़ी हमारे श्रोताओं को टिप्स बताइए अब समय कम रह गया है
4: जी
0: और
4: जी.
0: संगीत कैसे इसमें हेल्प कर सकता है
4: जी बिल्कुल
0: अब आप
4: देखिए हमारा दिमाग जो है ना वो हमेशा वो चीज़ें ढूंढता है जो हमको वैलिडेट करें अगर आपको वैलिडेशन आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में नहीं मिल रहा है तो आप उसको और जगहों पे ढूंढते हैं सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं एआई पे ढूंढते हैं एआई इज़ वेरी क्लेवर और वो आपको वो वैलिडेशन देता है जो आप अपने पार्टनर से भाई से पापा से मम्मी से चाहते हैं तो इसीलिए
0: वो मिलता नहीं
4: इसीलिए वो आपको एआई से मिल रहा है और लोग जो हैं उनसे प्यार कर बैठ रहे हैं उनसे रिलेशनशिप बना बैठ रहे हैं लेकिन इट्स अ वर्चुअल थिंग सो इट्स अ मेनेस एक्चुअली एआई इज़ नॉट अ मेनेस बट दिस फेनोमेना जहां पर लोग ये जो इस तरह से रिलेशनशिप बना रहे हैं दैट इज अ मेनेस वो आगे के
3: नहीं ये सोसाइटी की जो वीकनेस है उसको झलकाता है
4: फ्रेजिलिटी को बताता है कि कितना फ्रेजाइल है
3: आपस में बात करना अच्छे दोस्त होना परिवार में खुल के बोलना ये सब खत्म होता जा रहा है
4: जी
3: और आप अपने कंप्यूटर से बातें कर रहे हैं एआई से बातें कर रहे हैं और वहां से आपको खुशी मिल रही है अब आप उसी को रियल समझ बैठते हैं और यहाँ से एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाए
4: और एआई से पीछे जाएं तो सोशल मीडिया फेसबुक ले लीजिए व्हाट्सएप ले लीजिए हमारी लाइफ में अच्छी फीलिंग्स तभी रहती हैं जब मैंने फेसबुक पे कुछ डाला और उसमें 150 लाइक
0: अब आप ये बताइए अब हमारे पास समय बहुत कम है
4: जी
0: कि क्या करें
4: सबसे पहली चीज जो कमी हो गई है वो है कि अपने सोशल दायरे को बढ़ाएं सोशल मीडिया पे नहीं आउटसाइड ऑफ सोशल मीडिया
3: फेस टू फेस
4: एक्चुअल वर्ल्ड में फेस टू फेस आप अपने दोस्तों से बात कीजिए दोस्तों को फोन कीजिए दोस्तों से मिलिए उनसे बात कीजिए मुखातिब होइए उनसे सामने मिलिए रूबरू होइए रादर देन कि उनसे व्हाट्सएप पे और उनसे फोन पे चाय पे जाइए कॉफी पे जाइए बिल्कुल बिल्कुल
0: मिलिए तो ये हो गया कि जितना हम मिले एक दूसरे से
4: बिल्कुल
0: दूसरा
4: एक साइकाट्रिस्ट होने के नाते मुझे ये बात बोलनी ही पड़ेगी कि अगर आपको लगता है कि आपकी स्थिति ऐसी हो गई है जहां पर आप काम नहीं कर पा रहे हैं और आप नेगेटिव चीजों में धसे जा रहे हैं और आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है और समय हो चुका है काफी तो सीक हेल्प इज
0: वेरी इंपॉर्टेंट
4: यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम अ फ्रेंड और यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल बट सीक हेल्प और एक प्रोफेशनल आपको बता सकता है कि शायद आपको जरूरत नहीं है किसी दवाई की आप बस केवल अपने आप को दोस्तों से मिलाइए और आप कुछ पॉजिटिव चीजें करिए अध्यात्म से जुड़िए योग से जुड़िए पॉजिटिव फिजिकल हेल्थ से जुड़िए और वो आपकी हेल्प करेगी दैट मे बी इनफ और अगर नहीं तो ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आपको दवाई और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो
3: हेल्प में ये सारी चीजें
4: जी जी तो ये सबसे बड़ी टिप मेरे ख्याल से मैं देना चाहूंगा अपना वक्त जो है वो स्क्रीन को कम देना चाहिए स्क्रीन टाइम कम करें ये मैं कह रहा हूं और कहते वक्त मुझे खुद मन में अंदर अंदर चुभन हो रही है कि ये मुझे खुद से शुरू करना पड़ेगा सबसे पहले सोने से पहले सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सुबह उठने के बाद और सोने से पहले
3: सुबह
4: स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए
3: सुबह उठते ही स्क्रीन पे ना जाए और रात को सोने से आधा घंटा पहले सब
4: बिल्कुल बिल्कुल बिस्तर जिस बिस्तर पे आप सोते हैं उस बिस्तर पे कंप्यूटर और मैं अपनी कल रात की ही चीज सोच रहा हूँ जब कंप्यूटर मेरे पास था जब मैं सोने जा रहा था तो पर सच्चाई ये है कि ये सारी चीजें जो हैं वो नेगेटिविटी लाती हैं क्योंकि आप कुछ अचानक से पढ़ते हैं आपका मूड खराब हो जाता है और सब कुछ सही चल रहा है जीवन में, उसके बाद भी वो आपने मैसेज पढ़ लिया व्हाट्सएप पे या न्यूज में कोई चीज रात के सोने से जस्ट पहले, और आप उसकी वजह से आपका मन खराब हो गया,
3: सारे सपने वैसे आएंगे, आप सुबह बड़े ग्रंपी होकर उठेंगे,
4: एग्जैक्टली
3: आपका दिल नहीं करेगा कुछ करने का। और हमारे परिवारों में जो ये प्रथा है कि सुबह उठते ही सबसे पहले भजन लग जाते हैं, तो आपका जिसे कहते हैं ना वही कंडीशनिंग, आपका एनवायरनमेंट अगर शांत और अच्छा है दिन अच्छा निकलता है।
4: मेरे घर का एक रूल है जो मेरी वाइफ ने बनाया है, और वो ये है कि पहला गाना सुबह का भजन
3: ही होगा। सही बात,
4: तो वो बच्चे भी उसमें ढल चुके हैं, उन्हें पता है कि पहला गाना भजन बजेगा।
3: हमने भी बचपन से ऐसे ही देखा है।
4: तो दैट गिव्स पॉजिटिविटी।
5: पूरा सेंट्रलाइज आपका रेडियो है पूरे घर में, वो है कैसे?
4: पूरे घर में है, पर हमें पता है कि वो कहाँ बैठने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सवेरे नहीं लगाते गाने वगैरह कुछ, क्योंकि सवेरे जल्दी होती है स्कूल जाने की, ऑफिस जाने की, पर जब बच्चे कार में बैठते हैं तब उनका पहली फरमाइश आती है कि गाना लगेगा, तो वो भजन होता है।
5: ओके।
4: वो भजन होगा पहला, और उसके बाद ही फिर कोई गाने लगेंगे।
3: ये विवेक जी ने एक मैसेज भेजा है, सो ट्रू, पेरेंट्स शेप एवरीथिंग बट प्रेजेंस अलोन इजंट इनफ, इट्स द लेसन वी बिल्ड इन टीचिंग किड्स दैट रिवॉर्ड्स आर अर्नड नॉट गिवन।
4: Exactly.
3: I have seen it often, a child with an honest parent and a limited means gets a stronger upbringing than one with wealthy parents and endless time and resources but poor values. So absolutely. Value system ko,
4: absolutely.
3: Belief system ko strong karna hai.
4: Value system bahut important cheez hai.
3: Aur ant mein Leela ji likhti hain, Ankur ji se vartalaap bahut rochak aur sarthak lag raha hai. Geet karyakram mein char nahi hazar chand laga rahe hain. Leela
4: थैंक यू। और अब मुझे पता है इस वक्त हमारा खत्म हो रहा है, तो हम आपने आखिरी जो सेगमेंट पूछा था, क्वेश्चन पूछा था, वो था म्यूजिक और मेंटल हेल्थ।
5: जी,
4: तो देखिए अगेन इस पे हम घंटों बात कर सकते हैं म्यूजिक और मेंटल हेल्थ पर, पर कुछ शब्दों में कहूं तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में ऐसा कोई ना कल्चर है ना था जिसमें म्यूजिक नहीं था। म्यूजिक हैज बीन देयर सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि म्यूजिक हमारे मानसिक स्वास्थ्य, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का एक हिस्सा है। इट इज द ओनली एक्सरसाइज, ओनली एक्टिविटी विच एक्टिवेट्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ब्रेन, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। सो दैट इज द यूनिक पार्ट ऑफ इट। आज उसका ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल हो रहा है लोगों की, बूढ़े लोगों की जिनको डिमेंशिया है, जिनकी मेमोरी जा रही है, उनके लिए म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल हो रहा है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए भी म्यूजिक का इस्तेमाल हो रहा है।
5: तो आपने तीन समाधान बोले, म्यूजिक का भी बहुत अच्छा उसमें
3: बहुत अच्छा योगदान।
5: लेकिन श्रोताओं, अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, हेल्प की अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन मेरा एक है कि घर से बाहर निकलिए,
4: बिल्कुल
5: अपने कंफर्ट
3: नेचर से
4: जुड़िए,
3: नेचर से
5: कंफर्ट जोन से निकलिए, जो भी है जाइए किसी को यू नो। और अगर आपको अंदर कुछ गिल्ट जैसे चल रहा है तो वो उसको भी आप संभाला जा सकता है, ये ऐसे मैं मानता हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है,
3: समय हमेशा ही कम पड़ जाता है।
5: जो हमें समय दिया है बहुत बहुत धन्यवाद है, काफी लोगों का जीवन होगा। एक हमारे कोई नए श्रोता है जो उन्होंने मुझे मैसेज लिखा है, उन्होंने लिखा है हैप्पी टू बी ऑन रेडियो फॉर सपोर्टिंग मेंटल हेल्थ इफ यू हैव टाइम। थैंक यू। आपने अपना नाम नहीं लिखा है, वरना मैं आपका नाम भी लेता। लेकिन आज पूनम जी
4: थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और बात करने के लिए। और
3: बात करके मेरे ख्याल कई लोगों की भ्रांतियाँ या ऐसी बातें जो वो किसी से पूछ नहीं सकते थे, आज उनके क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे जरूर। थैंक यू,
4: थैंक यू सो मच, थैंक यू।
6: You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au.
7: आप सुने थे हिंदी कार्यक्रम, हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में, ईमेल कीजिए feedback@dapanradio.org.au।